0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: बापा जी ताड़ी ऐस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उस दा आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आ पुत्र ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं तुम्हारे को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंधे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उथे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परिदायुज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानिवे सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानिवे सो सिर की देताए उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा।
5: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता तो हो तुम चाहिए भी की जो कुछ मैं लोग दे जाते ने जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थे दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पल्ले नहीं।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।

जो मंग कर दी एदा पति ओयो चीज लेके हाजिर करदा सी। पर हुण एदी ए परवाह नहीं करदा क्योंकि हुण इनू पता लग गया है कि तत वस्तु कुछ होर चीज है। हुण ए परवाह नहीं करदा, मस्त रहिंदा है। एक दिन वक्त वेखिया, इस स्त्री ने इनू पुछया।

राजे ने सोचिया मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार कीती क्योंकि ओ ते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहन लगे मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इन्हें उठ के नमस्कार नहीं कीती, इनू मैं इस गल दा मजा चखावांगा। कहंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते ओ मोया होया सप उस ऋषि दी गल दे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलणगियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्र नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उहने आके अपने प्यो दे गल विचों ओ सप लाया, नाल ही उहने श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तों सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई, पश्चाताप कीता कि ऐ राजन तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे हैं, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहंदे ने साधु दा वचन कदे खाली नहीं जांदा। इने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तों बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दसिया, किसे ने कुछ दसिया, अखीर कुछ मंत्रियां दी सलाह होई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया ते मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जावे, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तां शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा, इस करके शीशे दा एक महल बनाया जावे। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों ओ समा लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया, राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों ओ समा पुज्जा आके चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक एथे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लैके, गुलदस्ता लैके राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। ए मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जाके फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओ फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इस नूं आई। फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया, इसने कहण लगा मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ओ खुशबू नूं लैण वास्ते कहंदे ने ज्यों ही नक नाल इहने गुलदस्ता लाया, कहंदे ने कि उस फुल दी पंखड़ी दे विच ततिछक नाग, जिस बारे ऐसा दसिया गया कि ओ इच्छा नाल वड्डा रूप धारण कर लैंदा है ते इच्छा मुताबक छोटा रूप धारण कर लैंदा है, एकदम प्रगट होया, मारिया डंग उसने, राजा परीक्षित उत्थे ही प्राण त्याग गया। गुरु अर्जन देव पातशाह अपनी पवित्र बाणी विच इस घटना दा जिक्र

जे हुकम आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दस देने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं पलाया होया।

हे मेरे राम ए साडे नीवे करम मंदे भाग मैड़े करम तू सानू बख्श लै मेरे राम ए नीच करम हर मेरे इना कुकर्मा विच पै के असी अवगुण ते कठे कर रहे ने साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा हो। मैं कई बार बेनती करिया कर दा आपां जदों गुरु दरबार आईए ना उदो कोशिश करिया करिए कि हाथ बन के बेनती करिया करिए हे परमात्मा तू कर कृपा मैं थे एक अवगुण छड़ जावां ते इथों एक गुण लै जावां क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना हुण तुसी देख लो बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए आ ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे हुण बैठे उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए मालिक एक सबक रोज दे दे एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे आ असी उस गुणा नु ग्रहण करना शुरू कर दिता एक दिन गुण ही रहणगे अवगुण नाश हो जाणगे क्योंकि गुरु नानक दा डर ऐसा है नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे एते निर्गुणा नु गुणवान बना दिंदे हन ते इस दर ते आके भी असी अवगण नहीं छड़ दे ध्यान देना अवगण नहीं छड़ दे बल्कि असी आउणा छड़ देने। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया ते तीर्थ ते बैठियां मुखी पंडित ने आखिया हे भाई तेरे इथे बुजुर्ग भी आया करदे सन तू भी आए ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगण छड़ जांदे सन कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन प्रण करके जाया करदे सन ते तू भी कुछ प्रण कर जा तू भी कुछ त्याग दे तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसीं हुक्म करो की छड्डां कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज उन्हां ने वह अवगणा दा नां लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा हां ए हो सकदा है मैं इत्थे आउणा ही छड़िया मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन वह अवगण नहीं त्याग दे आउणा छड़ दिंदे ने कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए क्यों कौन हुंदा कोई सानू सच कहण वाला आपां जिवें चल रहे हां ठीक है नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी ते गुरु सानू गुण देवेगा कि ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे इसलिए साहब कहिंदे ने मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया हे मेरे मालिक तू गुणवान है तेरे अंदर गुण हन ते तू साडे ते कर कृपा।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधो, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तो ध्यान देन। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने।

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकता है, भगत ही कह सकता है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए,

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। ओ जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सत्संग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी। ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच

अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे कि निंदक दी ए निशानी है जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे खुशी विच आंदे।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

पलो पयो प्रेत कया मनिया सुख सहज इस कर का जानिया हो तुम भी प्रखिस्मत बार ओ अवनासी अग्नि अपार ले पक्का प्रेत चल।

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे ते तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

मन गुरु चरणा दे नाल जोड़ के वाहे गुरु शब्द दा उचारण करदा उस नूं एडा वड्डा फल प्राप्त है कि जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए अठ अठ तीर्थां दे इशनान दा फल एथे ही बस नहीं जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहे हो कोई चार युग कैलाश पर्वत ते बह के तप कर लवे और इसका महात्म एथे ही बस नहीं अगलिया तुकां विच

बेर कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, उन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड़ा वड़ा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी विच बयान कर दे आन, भाई वाहेगुरु शब्द दे जपन नाल चौवां जुगां दा मंत्र जपया जांदा है। चौवां जुगां तो केड़ा केड़ा अखर लैके वाहेगुरु शब्द

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसी तरह

अपने सह दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया, वो सारियां नूं चंगे लगदे ने। क्यों? जो हर का प्यारा सो सभना का

हाँ तिन बलहारे जा। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन्हें पीता वो त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थों विच सुख ने एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज कार विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जाऊं मैं उन्हां तों

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, है परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत, आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे, वह समझदा कि मेरे वर्गा हुण कोई नहीं। यह जड़ी मैं है, एहो इंसान नूं चैन नाल नहीं बैठन दिंदी। अज हर

जो गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवान दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदू तक मन विचों हमें नहीं जाती, उदू तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हमें की है, मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान नु जीवन नहीं दिंदी। घरां विच भी सुख नहीं, घरां विच भी मैं है, भरा भरा दा प्यार नहीं, प्यो पुत्र दा प्यार नहीं, पत्नी पत्नी दा, पत्नी और पति दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे हमें और माया आ जावे उथों प्यार उठ जाता है, और हमें ता आंदी है जद इंसान परमेश्वर नु भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके, गुरु होने का मन विच मान नहीं, कहंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दिती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नु दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दिता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नू जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नू दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापा तो झूठ तो वो बच सकन।

मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी वो भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखिल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अथरू पै वगदे ने ते कहन लगे पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे धीए जा अपनी मां नूं मिल उन्हूं भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुक।

हवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नावे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं, आओ अपनिया बिरतियां उस पास लै चली। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले, नाल बेबे नानकी दे पर

अपनी माता माता तृप्ता नु गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नु देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नु कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेकिया। मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन ए नहीं हो सकता।

जद इतने बचन कहे भैन जी ए बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसीं जाके भाई अजय राम जी नूं लैके आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पूछते ने बेटा कित्थे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ये प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओह ही जानता है जिसने ये प्यार किया है भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पराई जांके अंदर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओ ही जाने।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तो प्यार नाल सरवण करना इस शब्द के विचों बहुत कुछ मिलना है।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म

बहुत सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडन तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब पृथ्वी दे साई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा दार, जित द्वार है उपरे तित है ले बार, जिवें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिवें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तों जिस दर तों कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़दा है।

अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा ढंग वखरा, अमृत लभण दा ढंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलियां युगां विच अमर होण वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, ओ अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमा दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वड़ा है। एक वरी देवतियां ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजां लभनियां ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे हैं क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पास से दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकले जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिते अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ

कीर्तन करने वाला तन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं ढाडी विकार मैं उस परमेश्वर दा ढाडी हां उदा कीर्तन करने वाला पर मैं वेला सी कारे कहंदे ने काम उस पर

सोतकंदे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा कहा सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी। ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाण वास्ते। ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिहा मैं पंथ।

सहन वाली है, चौड़ी छाती, मथा चमकद है, अखा में चिनाम दी लाली, बोल फरक दे नहीं, सोना दाड़ा, सिर ते दस्तार, हाथ कड़ा, गात्रे कृपान, तेड़ कछहरा, सोनी सूरत देखी तो गुरु साहब जी पूछ देने, ऐ सूरत तू कौन है? उस सूरत बोली, मैं खालसा। गुरु साहब जी पूछ देने, तू कितों आई है? उस सूरत बोली, मैं तो आड़े हिरदे विचों आई हाँ, मैनू हुण तुसी बार प्रगट करो, जो चाहिदा सी ओ मिल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वापस आनंदपुर साहब आ गए, पर सोचन लगे ये सूरत बड़ी सोहनी, पर किन्नू दया मसंदा पंडतां साधुआ सन्यासिया किन्नू दया ये सूरत, क्योंकि जे आपां दुध लैण जाना होवे ते भांडे नूं चंगी तरह साफ करके ले जाने हैं, जे दुध वास्ते भांडा साफ चाहिदा है ते अमृत वास्ते भी तां मन दा भांडा।

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतिया सन, अखां खोलिया। एक पहरेदार सिख नू कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है, जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है, अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह, मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया, तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता। नाल आया पहरेदार, कहन लगा, ए दरबार क्यों नहीं जा सकता? तां खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड्डा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नूं दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ते सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदिया अरदासां करदिया गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरणा ते रख दिता ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबुल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदिया, सानू पता है सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है, पर साडे वास्ते बेटा की लैके आए? साध संगत, गुरु किसे चीज का भुखा नहीं, गुरु ने बेटा क्यों मंगी, ए ते गुरु का कौतुक है। कहन लगे, सिखा साडे वास्ते बेटा की लियांदी? सिख हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह मैं की देन जूगा, सब कुछ आपदा है, मैं सुनियारा वा, हाथियां दे दंद दा एक कंगन जिदे विच हीरे जड़े हुए सन, मैं आपदे वड्डे मसंद चेतो नूं उदों दिता सी जद वो काबल गया सी। दूसरा कंगन जिदे विच हीरे जड़े ने मैं लैके आया सां, वो कंगन मैं चेतो मसंद नूं दे दिता,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਐ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਗਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਕੰਗਣ

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसां ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी उहदे विच लिखिया है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी कीर्तन हो रहे बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहिब जी विराजमान ने अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चेहरे दा रंग बदली होया चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विचों कृपान खिंची ते ललकार के कहा साध संगत मैनू एक सिर दी लोड़ पहला तां किसे नूं समझ ही ना आई जदों दोबारा कहा मैनू एक सिर दी लोड़ है हर पासे सहम छा गया कि एह की हो गया गुरु साहिब जी अपने सिखां दे सिर मंगण लग पए। तीसरी वारी सिर मंगया तां भाई दया राम उठे हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज मेरा सिर हाजर है। दया राम नूं बाहों फड़िया तंबू च लै गए कृपान मारी सिर वड्या लहू नाल भरी हुई कृपान लैके जदों साहिब जी वापस आए लहू भरी कृपान देख के जिहड़े बैठे सन ओ सारे कंब गए। जिहड़े दूर दूर बैठे सन ओ उठ उठ के

ते जड़े दूर दूर भज गए सन भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने कोई फड़न दे नहीं आ रहे पर पंजवीं तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए जड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पे ने हुण गुरु साहब जी उस तंबू विच बाहर निकले कृपान म्यान विच है चेहरे ते हुण रौनक प्यार है वो पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन ओ ते जिउंदे ने इक वर्गे कपड़े पाए ने गात्रे कृपान सोहणियां दस्तारां हत्थां विच कड़े तेड़ कशहरे हाथ जुड़े ने पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए विशकार दो तारा खंडा रखे।

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।